0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मुहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमा हो गए।
0: जग में जब आए मुहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामाइन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामाइन, आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब से करवाते हैं। आज के इंटरव्यू में उन्होंने क्या फरमाया?
2: मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के पैनमा के हवाले से, बड़ी ही तगो दो के बाद, वो सारा यहाँ दोहराने का कोई फायदा नहीं, सबको पता ही है, छह छह रुकनी कमेटियां बन गई। आज जब उसका इजलास खत्म हुआ तो पहले एक हुकूमती रुकन यानी कि इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कहा कि 15 निकात थे अपोजिशन के, उसमें से 2 में से 10 पर्दार हो गए वो। और उसके बाद खुद एतजाज अहसन साहब आए और इन्होंने, एतजाज साहब ने उसकी तौसीख कुछ इन अल्फाज में की। मैं चाहता हूँ आप पहले सुन लीजिए, फिर जरा मैं उस पर कमेंट लेता हूँ कि ये क्या हुआ। जरा सुन लीजिए एतजाज अहसन साहब ने क्या कहा।
3: यहाँ तक कि हमने कहा कि इसमें से अगर वो समझते हैं कि वजीर आजम का नाम आता है वो भी हम निकालने को तैयार है, इस पे एग्रीमेंट नहीं हुई, पर हमारी तरफ से पेशकश है जो उनकी सऊदी अरब में क्याम के दौरान के तहाइफ और मरात लेने के बारे में वो भी छोड़ने को तैयार है।
2: डॉक्टर साहब, आपके लिए बाइस हैरत नहीं है बात कि वो अपोजिशन जो कल नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांग रही थी और उनका नाम लेने से थक नहीं रही थी, आज बाकायदा तौर पर इस बात के लिए तैयार हो गई है कि TOR से नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दिया जाए?
4: देखिए, ऐसे ही हालात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुबारक कलेमा तलकीन किया है, उसे कुरान मजीद में यूं बताया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
2: ओहो,
4: मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई,
2: अफसोस हुआ।
4: आप मेरे पिछले इंटरव्यूज को भी देख लें और मैंने तो तसलसल से ये कहा है कि ये कमेटी, अभी तो आज आप ये सुनवा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम निकालने के लिए तैयार है, 15 में से 2 निकात खारिज कर देने के लिए तैयार है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 15 में से 2 रह जाएंगे, 13 निकाल देंगे।
2: अरे,
4: ये तो TOR इसलिए बना है कि पानामा कमीशन के केस का जनाजा निकाल दिया जाए। ये पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी करप्शन के मैटर को, जो मीडिया ने, कौम ने, पार्टीज ने, अवाम ने इत्तेजाज किया, शोर मचाया, ये उस इशू का जनाजा निकालने के लिए बना है। और मैंने पहले भी एक बार ये बात की है, कल बादामी साहब, कि असल TOR लंदन में बन रहे हैं और जो जो चीजें एग्री हो रही हैं

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाइन और नाज़रीन, इस वक्त हम फ्रांस की फजाओं से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप पाकिस्तान में टीवी पर देखते रहते हैं, अखबारात में पढ़ते रहते हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं, मेरी मुराद है सेनेटर सलीम ज़िया साहब। इस वक्त फ्रांस की फजाओं में हमारे साथ कोपेनहेगन डेनमार्क

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिस्मिल्लाह, नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है, पत्ते गिर गए हैं और बादल भी आ गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आज क्या लेकर आए हैं आप?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टर नाजरीन को, सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इस वक्त डेनमार्क का मौसम तो बहुत सर्द हो रहा है, बल्कि सर्दियों की तरफ, सर्दियों की आमद आमद

0: ये याद रखे कि छुट्टियां तो आपका लीगल हक है, लेकिन आपका ये लीगल हक है कि जब आप इस मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन देनी, वहां पे कानूनी तौर पे आपकी मदद करना इस गवर्नमेंट का, इस मुल्क का फर्ज है। आपके पास येलो कार्ड हो, आपके पास परमानेंट अपॉर्चुनिटी लेटर हो, लेकिन आपके पास अगर खुदा ना हासा नेशनलिटी है, मेक नो डिफरेंस, आपने अपने जो आपकी बॉस सर्विस है उसको आपने इन्फॉर्म करना है कि हम छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खासा वहां पे जाकर आप से कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो वो आपकी पूरी एम्बेसीज वहां की और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है वो आपकी मदद करते हैं। ये लीगलाइज चीजें हैं और ये आपको करते हैं। अब पाकिस्तान जो है वहां पे राइजे फुजिंग जो है वो कवर नहीं करती। वो राइजे फुजिंग इसलिए कवर नहीं करती कि आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर है, और ये इस वजह से है कि कैटेगरी 5 उस पर लागू होती है। हालांकि ग्रे ग्रे जोन से पाकिस्तान निकल चुका है, और ग्रे जोन से निकलने के बाद ये हमारी एम्बेसीज और हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी वजह से यहाँ पे ये केस पुट अप नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस पे आवाज उठाई जा रही है। कम्युनिटी के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप अपनी छुट्टियों पे अपनी इतला करके जाएं ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी मुल्क में आ जाती है। एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आप बता कर नहीं जाते और वहां पे आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, आप काम पे नहीं आ सकते, आप फंस गए हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है डेनमार्क के अंदर। लिहाजा जब आप बताकर जाएंगे तो डेनमार्क से वहां जाने पे ये गवर्नमेंट जो है, एम्बेसी जो है, वो आपकी फुली मदद करेगी, बजाय आप वहां जाके ऑल फॉर बके और ये कह दियो ओ जी उसको मुझे तो समझ नहीं आई, मैं कानून नहीं। हम आपको बता रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लीगल बताकर जाना आपका राइट्स है, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, और अगर आप कम्यून से सोशल ले रहे हैं या आप ऑफिस लूज है, फिर भी आपका राइट है कि आप छुट्टियां ले सकते हैं, और आप उनको बताएं वो आपको छुट्टियां देंगे और उन छुट्टियों में आपको बकायदा पैसे मिलेंगे। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, आपने तो सारी मालूमात दे दी। तो शाह साहब, ये जो हमारे सिटी काउंसिलर साहिबान होते हैं जिस जिस कम्यून में बैठे होते हैं, मैं कोपनहेगन की बात करूंगा, फ्रेडस्पिया की बात करूंगा, तो ये लोग क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते? जब ये इलेक्शन आते हैं तो ये माशाल्लाह सारे एक्टिव होते हैं, सब जो पाकिस्तानी नसाद जो डैनिश भी हैं और उनके पास परमानेंट अपॉर्चुनिटी भी है, ये सारे लोग ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं। क्या बात है शाह जी?
0: राजा साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाया। आप रेडियो पे ले लेते हैं हम लोगों को आपके थ्रू, आप हमें मुझे कहते हैं मैं और हम एक दो बंदे हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हैं, लेकिन अगर लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सवाल जवाब नहीं करते, लोग आपको लिखते नहीं है कि हमें ये कानून के हमारी रहनुमाई फरमाए, तो यहाँ पे इतने ज्यादा फैसिलिटीज हैं इस मुल्क के अंदर कि जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं, जिनको हम सही मायने में उनको लेके चल सकते हैं। बाकी रहा ये काउंसलर्स और ये जो ये लोग एक पोस्टर हैं, ये बस आते हैं कि हमें हमें हमारी तस्वीर आ गई, हमारा पोस्टर लग गया कि हम काउंसलर बन के हमें हम जी बहुत हायर एजुकेटेड हैं। हमने ठीक है जी, आपको मुबारक हो, आप बहुत हायर एजुकेटेड हैं, मेक नो डिफरेंट, अच्छी बात है, आप और हायर एजुकेटेड हो, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये लोगों को आकर आप खुद दें कि आपकी कम्यूनों के, क्योंकि हम बारहा पिछले 8-9 साल से आपके रेडियो पे ये बकायदा बता रहे हैं लोगों को कि हर कम्यून के अपने अपने जो आवाम है, आप जो उस इलाके में रहती है उसके लिए डिफरेंट कानून है, उसके लिए डिफरेंट चीजें बनाई हुई है, और आप उनको कैसे चलाते हैं, फिर ये इनका काम है आकर बताना और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है कम्यून के अंदर और आपकी रसाई वहां तक नहीं हो सकती, तो फिर आप इन काउंसलर से बात कर सकते हैं कि भाई प्लीज आप हमारी मदद करें। अब काउंसलर जो है वो अपना काम करते हैं, प्राइवेट जो जॉब वगैरह करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए कोई प्रोग्राम, कोई अगर कोई इनकी अपनी जो छोटी सी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर कोई बहस मुबासा, तो ये खुद पूरी वो चीजें पढ़ के नहीं गए होते, वो बजट को इनका पता नहीं होता, ये जाते हैं और मुंह उठा के आ जाते हैं, कहते जी हमने बस ये हाँ हाँ कर दी। तो हालांकि जो पार्टी के चुने हुए लोग होते हैं वहां पर बोलते हैं और ये बस साइन करके आ जाते हैं, तो ये आवाम को क्या बताएंगे, ये तो फोटो सेशन के लिए आते हैं
1: तो
0: और फोटो सेशन
1: करा एक
0: के।
1: एनवायरनमेंट होती है कि अगर आपने यहाँ डेनमार्क की सियासत ही नहीं करनी, लोकल जो सियासत होती है बड़ी पावरफुल सियासत होती है, यहीं लोकल जो है लीडर बनते हैं, यहीं से पार्टियां टिकट देती हैं, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट इस तरह का ना हो, हमारा इंटरेस्ट जो है पीछे की तरफ हो, तो हम जो है वो ऐसे लोग आ जाते हैं, वो उन्हें जाहिर है कि एक जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, खाना मुफ्त होता है। तो शाह साहब इससे तो बड़ी कोई अय्याशी नहीं है, जबकि हमारे बच्चे यहाँ हैं, इन्हें यहाँ पढ़ते हैं, इन स्कूलों में जाते हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, इन्हें तो यहाँ की सियासत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
0: राजा साहब आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है। इन सियासतदानों को मैं क्या करूं, मैं तो इनको दावत देता हूं आओ मेरा सर पाड़ो, मुझे मारो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मेरे दांत दारा तोड़ो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मैं बूढ़ा आदमी हो गया, मुझे समझ आए कि अब जवान लोग मुझे मार। देखिए पिछले 25-30 साल से जब से इनवादा के जो कानून जो है सख्त हुए हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हजारों के हिसाब से लोग जो हैं वो विद फैमिली जो हैं वो ग्रीन कार्ड पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स की और बड़े बड़े साइंटिस्ट की शक्ल में वो डेनमार्क में आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना, हम अपने किसी रिश्तेदार को बुला सकते हैं, ब्लड रिलेशंस को यहाँ बुला सकते हैं डेनमार्क के अंदर विजिट करने के लिए, ना ही हम अपने बच्चों की शादियां जो है वो अपनी मर्जी से वहां पे कर सकते हैं। ये जो ब्लंडर कर रहे हैं इसकी इसकी वजूहात जो है ये हमारे काउंसलर हजरात हैं, क्योंकि हम इनको वोट देते हैं और ये कहते हैं जी हमारी बिरादरी। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पे मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं, मसाजिद जो है वो फिरकों की अलामत होती है, और उसके अलावा यहाँ पे बलादरी इज्म जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, और गांव के अंदर और जी ये फलाने पिरदा अस्तफार अल्लाह ताला मुझे माफी दे, मैं अल्लाह ताला से माजरत करता हूँ और माफी मांगता हूँ और उन लोगों से माजरत करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि ये फलाना कमी है, फलाना ये फलाने पिंड है, ये फलाना फलाने का, मैं बड़ा बड़ा चौधरी हूँ, पीछे चौधरी साहब के पास उस वक्त मंजी बिस्तरा ही ना होता हो, लेकिन ऐसा जब आ जाता है तो फिर सब चौधरी बन जाते हैं। तो बात असल में यह है कि हमें यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना चाहिए। इस्लाम में सबसे बड़ी इस्लामी तलीमात में यह है कि हम सब बराबर हैं और सब कलमा गो हैं, हमें किसी को ये काम नहीं देखना चाहिए।
1: यहाँ तालीम मुफ्त है, हर चीज जो है वो पढ़ने यूनिवर्सिटी तक की तालीम मुफ्त है, तो किस तरह बच्चों को जो है, बच्चे पढ़ते भी हैं जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा नाम है बच्चों का, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गो के किसी भी महकमे में चले जाएं, हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं, गैर मुल्की बच्चे बड़े काबिल हैं। शायद सब कौन सी गाइडलाइन दी जाए कि जब 70-71 वाले लोग आज वही कुछ बनाना चाहते हैं जो 70-71 में आए थे, हमारी तरह बनो।
0: जब तक हम अपने कलमा को भाई को अपने बराबर का स्टेटस नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है। जब तक हम किसी को कमी और ये कह ये फलानी नस्ल का, ये फलानी नस्ल का, जब तक हम इस चीज में, ठीक है अगर कोई बंदा शराबी है, नशा करता है, उसके अंदर कोई बुराई है, तो एक वो अकेला सब्जेक्ट है, उसके आप दूर है, एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, या कोई पीछे कोई बेचारा जूतियां सी रहा था या कपड़े सी रहा था, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो दर्जी है या क्या था या नाई था, उसको इसके पेशे पे मत जाए, ये देखिए कि उसके अंदर खानदान कौन सा है, उसका खून क्या है, उसके दूसरे लोग क्या करते हैं। आप ये हिसाब लगाए कि मैंने खुद लोगों को देखा है गुजरात शहर के अंदर, जिस मोहल्ले से मैं आया हूँ वहां के बहुत बड़े लोग ऐसे थे जो कि टूटे हुए मकानों में रहते थे, लेकिन बाद में उनके बच्चों ने एजुकेशन हासिल की और उन्होंने टॉप में पाकिस्तान के वो लोगों में शामिल हुए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा जो मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ते थे, उनमें से मेजोरिटी जो है उन्होंने बड़ी बड़ी जॉबें की। तो कभी किसी की ये नहीं देखना चाहिए कि क्या था, मेरा बाप जो था मेरा बाप था, मेरा दादा जो था वो उनकी अपनी पोजीशन थी। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ के मैंने क्या किया, मैंने डेनमार्क के अंदर सारी उम्र टैक्सी चलाई और सियासत की और लोगों से बातें की।
1: तो क्या इसका मतलब है आपको बहुत तजुर्बा है ये जो टैक्सी के मामला था, लोग बड़े खुश हैं, उनको जो नया नई टैक्सी ब्रांच चली है खुली है तो लोग परमानेंट जॉब करते हैं, महीने के महीने उनको तनख्वाह आ जाती है, अगर खुद भी माल अपनी टैक्सी है तो फिर भी वो अपनी 2-3 घंटे चला लेते हैं। तो शाह साहब ये जॉब अच्छी नहीं है?
0: ये बिल्कुल जॉब करना ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बता दूं कि अब क्रिसमस के बाद, दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी सबको पता है कि ये सबसे बुरे तरीन महीने होते हैं एक कैब ड्राइवर के लिए, एक लोगों के पास, क्योंकि दिसंबर का महीना वो क्रिसमस मनाने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए वो इंतहा से ज्यादा अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है उसको यूज कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो फिर लोग जो है वो इन पे सफर नहीं करते, कोई मजबूरी के आलम में हो तो वो सफर करता है, तो वहां पे इनकम जो है कम हो जाती है और ये अपने अखराज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो नई टैक्सी आई है, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आप 29-30 हजार आपको वेज मिल रही है उसमें से आप टैक्स दें और फिर आपको कंपनी जो है वो आपको एज ए ड्राइवर जो है वो रख रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी जो आपको वो टूर देंगे उस पर आपने टूर लेने हैं, इसमें आपको कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपको जहनी तौर पर यह नहीं कह रहा कि आज पूरी दिन में से आपने 1,000 करोड़ बनाया। वो ये तो आप तो आपको तो अपनी तनख्वाह से है और तनख्वाह आपको मिल रही है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 7.5 घंटे जो है आपने काम कर रहे हैं उसके अंदर आपके जो है वो लंच ब्रेक वगैरह भी सब कुछ है। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा महफूज है क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे टैक्सी बरादरान का सबसे बड़ा खुद कसूर है। जब हमने इनको 2017 में ये कहना शुरू कर दिया था कि खुदा रहा इस चीज को आप आगे लेके ना जाए, इसको यहीं पर स्टॉप कर दे और अपनी वॉनमैन जो है इसको बचाए, लेकिन इन्होंने क्या किया उस वक्त, इन्होंने कहा कि ये जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर शाह साहब बैठ के झूठ बोलते हैं और ये बस ऐसे ही बेकारे करते हैं और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई हमारी वॉनमैनशिप छीन नहीं सकता, हम लोग महफूज हैं। तो आज ये है कि कोई भी वॉनमैन नहीं है, कोई भी वॉनमैन जो है उसका स्टेटस जो है वो डेनिश जबान के अंदर वो एक आम गाड़ी का मालिक है, आम गाड़ी का जिसको इजाजत दी गई है टैक्सी चलाने की, जिस तरह ऊबर जो है वो इजाजत देती है कि भाई आप जो है आपके पास एक आम गाड़ी है तो आए हम आपको उसको एज ए टैक्सी चलाने की इजाजत देते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ये किया और ये इसलिए उन्होंने ओपन कर दिया हर चीज और इससे लोगों को।
1: शाह साहब एक बात सुनने में आ रही है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है कि मियां मुनीर साहब जो हैं वो फोरमैन रहे टेक्सा ब्रांच के, तो वो सुना है कि वो भी अपनी जो है वो गाड़ी वापस करने जा रहे हैं।
0: जी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां वापस कर दी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि गाड़ी के जो खर्चे हैं 30-35 हजार करोड़ का जो खर्चा है मंथली गाड़ी का वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप इतनी मेहनत करें और अपनी अपनी तनख्वाह भी ना निकाल सकते हो तो कोई भी आदमी जो है जो सेंसेबल आदमी है वो इस चीज को नहीं देखेगा। और दूसरा ये चीज है कि आप देखें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की मिलियन मिलियन करोड़ की गाड़ियां थी, अब उनकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं रही क्योंकि यहाँ पे तो अब नई गाड़ियां जो है अब आप देखें कि चाइना ने, मैं इसी हफ्ते में गया हुआ था चाइनीज गाड़ियां देख रहे, उन्होंने स्पोर्ट मॉडल और इतनी इतनी खूबसूरत गाड़ियां निकाल दी है जो 3 लाख से शुरू हो रही है इलेक्ट्रॉनिक और 3 लाख से शुरू हो रही है और उनके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज है, हर एक चीज है। तो ये चीजें जो है, ये और से ज्यादा सस्ती गाड़ियां आ रही है। लाख तक कोरोना में आप गाड़ी, आप छोटी से छोटी जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आप ले सकते हैं। तो ये गाड़ियां जो है अब सड़कों पे आ गई है, और लोग अगर लेते हैं गाड़ियां, मेरे अपने बच्चों ने रखी हुई है, तो ये गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो फिर बैटरी जो है जब उसकी गारंटी खत्म हो जाती है, तो फिर सबसे महंगी जो चीज है वो 1 लाख से ऊपर की जो बैटरी है वो जो है वो प्रॉब्लम करती है बंदे को। क्योंकि जब आप कारोबारी नहीं करते, आपके पास इतना बड़ा कारोबार नहीं है, आपके पास थोड़ा सा, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो बैंक आपको कभी भी नहीं देगा अगर आपके पास सरमाया है।
1: तो शाह साहब, भाई आपके गवर्नमेंट मदद नहीं करती, सब्सिडी नहीं देती,
0: कोई मदद दे जी? गवर्नमेंट तो, गवर्नमेंट जो है वो वसूल करने के लिए बैठी हुई है। गवर्नमेंट जो है वो आपको चेक में देती है। गवर्नमेंट जो
1: तो
0: है
1: शाह साहब, शहर में पार्किंग ही नहीं है, लोग घूमते रहते हैं। जब इतनी गाड़ियां आ गई हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कितनी बड़ी लेनी है, कितनी छोटी लेनी है। शहर के अंदर स्पीड जो है वो 30-40 तक हो गई है, तो गाड़ी की, बड़ी गाड़ी की कोई पाबंदी नहीं। हर गाड़ी का मीटर 220-250 तक चला जाता है। तो शाह साहब, ये पाबंदियां क्यों नहीं लगती?
0: देखिए, लग रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब पहले 1 करोड़ की होती थी इनकी वोल्टेज इलेक्ट्रिक गाड़ी की, अब डेली अखबारों में आ रहा है कि 4.5 से जो है 5 तक चली गई है, और दिन के मुख्तलिफ औकात में जो बिजली है वो महंगी हो जाती है, फिर सस्ती। ये एक एक किस्म की इन्होंने लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी ये कर लिया कि कमाई कराने करने का तरीका क्या है। पेट्रोल को महंगा कर दो, इलेक्ट्रिक को महंगा कर दो, कुछ चीजों में आप लोगों को छूट दे दो, फिर दूसरी जगह से आप पैसे पैसे जो है वो गवर्नमेंट अपने ले लेती है। तो ये जो मसाइल है गवर्नमेंट अपने अपने
1: टैक्स का निजाम है, फिर सहूलियात भी मिलती हैं, देख लेना, सोशल की सहूलियात होगी, इसी तरह बूढ़ों की सहूलियात होगी, गाड़ियों की सहूलियात होगी, अस्पतालों की सहूलियात होगी। शाह साहब, ये तो टैक्स से निजाम चलता है।
0: देखिए जी, टैक्स का निजाम जो है वो बड़ा ही गंभीर और गलत टैक्स सिस्टम है। यहाँ पे जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, अगर वो फ्रॉड करना लगे तो उनको करोड़ों अरबों का फ्रॉड कर जाते हैं और उनको टैक्स वाले नहीं पकड़
1: कानून
0: सकते।
1: फिर जो सजा भी देता है, इससे बच को नहीं सकते।
0: नहीं, वो सजा जो है ज्यादातर उन लोगों को मिलती है जो थोड़े थोड़े पैसे की का हो जाता है, जो कोई मजदूरी कर रहा है अगर उसका।
1: तो ऑन द होल इसका हाल बताएं, आपके पास 80 साल 50 साल तजुर्बा है, तो हमारे पास 2 मिनट है, हाल बताएं।
0: टैक्सी का
1: जो सारा निजाम, इसका हल बताएं हमें, क्या करना चाहिए?
0: सबका हल ये है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको राइट हासिल है कि आप हर साल अपने कम्यून के अंदर जाएं, आप उनको कहें कि जी मेरा कोबरा जो है, इसको कोबरा कहते हैं, आप मेरा जो है फाइनल जितना मैंने टैक्स दिया है, आप आवेश की हो, आप नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो आप वो अपना रिकॉर्ड निकलवाएं और उसको जो है आप जो है उस पर देख सकते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया है, या आपके आवेश जीवन ने कितना आपका टैक्स दिया है, क्या वो जायज है, क्या आपको इस साल जो है टैक्स किसका देना है, उस पर आप टैक्स ऑफिसर से बात कर सकते हैं। और अगर आप आवेश जीवन हैं तो आप ये देख सकते हैं कि क्या जायज टैक्स आपने पे किया है या कोई नाजायज आपसे लिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे पिछले 30-40 साल से ऊपर जो टैक्स का मिनिस्टर है इस वक्त, उन्होंने खुद ये बयान दिए हैं, और इसी तरीके से लिबरल अलायंस और दूसरों ने के बड़ा शोर डाला है इस बात पे कि टैक्स के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे लोगों को के कारोबार जो है वो छीने गए हैं, बाज लोगों ने बहुत ज्यादा।
1: तो शाह साहब, ये जो टैक्स का निजाम जो करते हैं जिसे रिवीसा कहते हैं, तो ये 1 महीने के कितने चार्जेस रहते हैं?
0: देखे जी, रिवीसर भी दो तीन किस्म के हैं। एक रिवीसर है जो मैट्रिक करता है या फर्स्ट ईयर अपना जिमनेजियम करता है और उसके बाद वो रिवीसर बन जाता है कोर्स करके। एक जो सही रिवीसर है वो होता है अपना स्टेट रिवीसर, और स्टेट रिवीजर जो है वो इतने महंगे होते हैं, वो करते हैं बड़ी बड़ी फर्मों के लिए काम, और हमारा आम आदमी जो है वो स्टेट रिवीजर के पास जाने को सोचता ही नहीं। हम जितने भी रिवीजरों के पास जाते हैं वो असल में रिवीजर नहीं होते, वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो होते हैं बुक बुक करने वाले। यानी जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं जी मुंशी, के हमारे मुंशी ने ये 1000 किताब लिख दी है, वो माजरत के साथ वो असल में मुंशी होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो आकर वो ये कर सकते हैं काम कि वो टैक्स को लिख सकते हैं कि भाई मुझे जो
1: कभी कभी इश्तिहार भी हमारी नजरों से गुजरता है कि आपको एक जो रिवीजर की जरूरत है, हम 600 करोने में 500 करोने में आपका महीने का हिसाब किताब किया करेंगे।
0: ये गलत चीजें हैं, इससे इंसान धोखा खाता है, वो एक किस्म के मुंशी होते हैं। और माजरत के साथ मैं इनसे, क्योंकि ये हकीकत है डेनिश कानून के अंदर, मैं खुद इस कानून को जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जो स्टेट रिवीजर होता है वो असल में वो बंदा होता है कि जो टैक्स वालों को लिखता है कि जो चीजें मेरे सामने मेरे क्लाइंट ने रखी है, जो पेपर उसने मुझे सबूत दिया है, उसके मुताबिक जो कुछ मैं लिख रहा हूँ और ये मेरे हाथ से निकल के गया है, इसको मैं हल्फन जो है वो मैं इसको सही समझता हूँ। लेकिन जो छोटे रिव्यूसर होते हैं वो लिख देते हैं जी कि ये चीजें जो तो मुझे उसने प्रोवाइड की थी वो मैंने लिख दी, वो इसको अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, वो कहता है कि जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया वो मैंने लिख के आगे कर दिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा स्टेट रिव्यूसर है वो कहेगा कि नहीं, मैं जो तो गलत पेपर है वो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं उन चीजों को लिखूंगा जिनके पास तुम मुझे सबूत के तौर पे दोगे, और जो पेपर होगा मटेरियल वर्क
1: तो
0: होगा।
1: शाह साहब, इससे साबित हुआ कि कानून का एहतराम करना चाहिए, कोई मुश्किलात नहीं आती।
0: बिल्कुल, आप कानून का एहतराम करें, फिर कानून भी जो है अगर उसके अंदर कोई ऐसी गलती आ जाती है तो वो कानून जो है वो रिवर्स होकर आपकी इमदाद को भी खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि देखो ये जो कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट में, आप इसकी तरफ ना जाएं, बल्कि आप उसको देखें जो आइन है, आइन के खिलाफ अगर ये कानून बने हुए हैं तो आप उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप ऐसी वायलेशन ना करें कि जिससे आप कानून की गिरफ्त में आ जाएं, और अगर आप खुदा ना खास्ता आ गए हैं और ये झूठा ब्लेम है तो फिर आप आपको उसकी
1: कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आपने मालूमात दी। सामान्य नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरह वो फरमा रहे थे, कानून कायदे का एहतराम करें तो मुश्किलात आपके सामने नहीं आएंगी। अगर कानून से कहीं ऐसी पैसी छोटी मोटी बात हो जाती है तो वो रिवर्स भी हो जाती है, वो आपको सबका बकाया जात भी मिल जाते हैं। तो लिहाजा सबसे बेहतर यही है कानून का एहतराम करें।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: उस वक्त की।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेशे खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सब

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पर मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने आयरलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को आयरलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फॉल के पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।